गिनना। सबई जाल तोड़े रनिस के रहे रे, खुला ठाव मा गई खुला सास फेरे। स्वयं भित्र आनंद हस्तै रहे छ, खुला बाहु फैला हुँदै चट्ट बेरी।

0: सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धारिंगबाट प्रवाह हुने सेवाहरू
1: 24 घंटा इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवा।

0: वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो

0: वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।